उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

भक्तजनों, हम आज आपको कांवर की महता सुनाते हैं। एक बार भगवान परशुराम अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता रेणुका जी का शीश काट देते हैं। इस पाप से बचने के लिए वो उपाय खोजते हैं। नारद जी के कहने पर परशुराम जी भगवान शिव की उपासना करके हरिद्वार से पावन गंगा का जल कांवर द्वारा लाकर शिव भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उसी चरणामृत को लेकर अपनी माता के मृत शरीर पर डाल देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से रेणुका जी को जीवन दान मिल जाता है। ऐसे हैं करुणाधारी भोलेनाथ। तो आइए आनंद लीजिए इस भजन का।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

रंग जहाँ के मैंने सारे देखे, ऐसे यहाँ पे नजारे देखे, दिन में निकले सितारे देखे, ये न पूछो जी कहाँ। रंग

Dushko, अभी आपने सुना है फिल्म का नाम है कॉकटेल 2। सुन लेगा ना कौन सी बोली सकेगा तो कि हमार जैसे आदमी तो के और ना मिलेगा। या हम बोले कि हम गनवा पे फरलीफ बाटी ना कि हम फरलीफ बाटी मैं हम गनवा पे फरलीफ बाटी मैं से फ्राह में मिते ही फन ए तू के कर ऊपर फरलीफ बाटे नहीं नहीं नहीं गनवा के ऊपर हम फरलीफ बाटे। यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुन वाला और उजाला रेडियो किसी भी प्रोग्राम में हम एक नाम आपको सुनने गुजार हैं ऑफिनाओ रेशमा है ऑफिनाओ शारदा है ऑफिनाओ और कौन कौन नाम ले चाहे जोन तो नाम हैगा तेरे चेहरे में वो जादू है तोर चेहरा में इतना जादू हैगा किशोर कुमार

0: शादी करोगी मुझसे?
1: उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, नया चेहरा पे सिर्फ ना देखा जाए तो मार वाची वहां से ऐसे नतीजे। कभी कभी हम लोग बहाना बनाएला मुलाकात करने के लिए। सोम्स विलोवे रेड हैबर ओमी मंतसीन।

मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

उजाला रेडियो पर आज की बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ये शाम अब समाप्त होने वाला है। सभी लाश त्राश को धन्यवाद। अब और एक आखिरी बैठक गाना आप सुनने को जा रहे हैं।

बंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय शब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करी प्रणाम सप्रेम सुबानी।

दोस्तों बैठक गाना हंगामा का प्रोग्राम धीरे धीरे अब खत्म होने को आ रहे हैं। बतंग फ्रोज लाइव उजाला रेडियो, हम विदाई लेते हैं इस खूबसूरत बैठक गाना के साथ।

Alternative Radio के जरिए हम प्रोग्राम में ये हम आपको सुनाने को जा रहे हैं एंड सुमति नतुलक और भी कुछ बातें हम करने वाले हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ प्यार मोहब्बत के गाने हम आज के प्रोग्राम में आपको सुनाने वाले हैं।

रिम झिम गिरे सावन उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं ये शानदार सिनेमा पेश किए गए हैं। एंड नाउ लुक, गर्मी के मौसम है, ब्लाइव कलम, ब्लाइव ड्रिंकन एंड गनीत फन द मोय वेयर, वंट ऐसन वेयर बार बार ना आवेगा, आवेगा मगर दन बिटी विसलफारो, दिस ऐसन मोय वेयर हैगा, दन मुझे गोन गनीते मेट फॉलो टूगन।

2. सुन लेगा ना कौन सी पुलिस रहेगा तो कि हमार जैसे आदमी तो के और ना मिलेगा। या हम बोले कि हम गनवा पे फरलीफ बाटी ना कि हम फरलीफ बाटी मैं गनवा पे फरलीफ बाटी मैंने फ्राह में मिते ही फम ऐ तू के कर ऊपर फरलीफ बाटे नहीं नहीं नहीं गनवा के ऊपर हम फरलीफ बाटे। यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुन वाला और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम एक नहमा आपको सुनने जा रहे हैं। ऑफिनाओ रेशमा है ऑफिनाओ शारदा है ऑफिनाओ और कौन कौन नाम ले माकने आए चाहे जोन तोर नाम हैगा तेरे चेहरे में वो जादू है तोर चेहरा में इतना जादू हैगा किशोर कुमार

0: शादी करोगी मुझसे?
1: उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, नया चेहरा पे सिर्फ ना देखल जाए तो मार वाची वासी से नतीलो। कभी कभी हम लोग बहाना बनाएला मुलाकात करने के लिए सोम्स विलोवे रेड हैबर ओमी मंतसीम

Yes, my dear, it's the rocking sensational broadcaster. उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। आपके खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाला है कि तेरे हाथों में पहना की चूड़िया। यूआर के सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन, मुबारक दिन प्रकट की जा रहे हैं स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। ए जानेमन, सुनना तेरे हाथों में।

और तेरे घर में उजाला कर दूं। मेरे दुखवीन आयशा भोसले और सुरो का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज कि तेरे हाथों में पहना की चूड़िया। रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं शो मार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक, और फोन का नंबर है 02040908 07 पर 02040908 07 पर। रेडियो के क्षेत्र पर हर कामकाज के वास्ते इश्तहार, ज़रूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार या जो भी कार्य के वास्ते आप हमें डायल कर सकते हैं। द राजंस के साज पर आइए मिलकर सुनते हैं फिरदौस राजन की आवाज़ में। आंखों आंखों में तुमने क्या कहा, दिल ने ये क्या सुन लिया। लीजिए पेश खिदमत है फिरदौस राजन।

सिलेक्शन आपके खिदमत में पेश की गई है जो आप हमेशा नहीं सुनते हैं। आंखों आंखों तुमने क्या कहा, दिल ने ये किया सुन लिया, द राजन्स के साज पर और फिरदौस राजन। हाँ, फिरदौस राजन की आवाज में आप सिलेक्शन उजाला रेडियो के जरिए सुने हैं। यू आर का भाई हम आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है और ऐसे में मौसम प्यार का, मौसम प्यार का रहे ना रहे क्या बात है।

मौसम प्यार का, मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और हसीनों के पुजारी किशोरदा की आवाज आप अभी सिलेक्शन सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। वंस अगेन प्रोग्राम में आशा जी की आवाज और साथ में सुरेश भटकर। टैक्सी वाले मीटर गिरा, चल मुझको सैर करा, जल्दी नहीं धीरे धीरे चला।

0: Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

क्या किया रे सनम आनंद राज आनंद एंड श्वेता पंडित इन दोनों से आप सुने नू नाडक कमरिया सॉन्ग था कमरिया

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: are.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी पिटा उजाना रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाना रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाना रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी के साथ अब आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजलें के साथ। और इस प्रोग्राम में जैसे आपको मालूम है तो बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से प्रोग्राम को आप सुन सकें।

से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, फूलों ने महकना छोड़ दिया और तारों ने चमकना छोड़ दिया। पंकज उदास जी की आवाज़ में इस गज़ल को आप सुने, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया में।

रिम झिम गिरे सावन उजाला रेडियो के जरिए भी आपने सुने हैं ये शानदार सिनेमा पेश किए गए हैं। एंड नाउ लुक, गर्मी के मौसम है, ब्लाइव कलम, ब्लाइव ड्रिंकें एंड गनीत फन मोई वेयर वंस ऐसन वेयर बार बार ना आवेगा आवेगा मैं दान बीच विसल फॉलो दिस ऐसन मोई वेयर हैगा द मुझे खौन गनीत मेट फॉलो टू यू।

Dushko, अभी आपने सुने हैं फिल्म का नाम है कॉकटेल 2। सुन लेगा ना कौन सी बोली सहेगा तो कि हमारे जैसे आदमी तो के और ना मिलेगा। या हम बोले कि हम गनवा पे फरलीफ बाटी ना कि हम फरलीफ बाटी हम गनवा पे फरलीफ बाटी मैं फ्राह में फन ए तू के ऊपर फरलीफ बाटे नहीं नहीं नहीं गनवा के ऊपर हम फरलीफ बाटे। यू आर उजाला रेडियो ये हैं सुन वाला और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम हम एक हम आपको सुनने गुजार हैं ऑफिनाओ रेशमा है ऑफिनाओ शारदा है ऑफिनाओ और कौन कौन नाम ले माकने आए चाहे जोन तो नाम हैगा तेरे चेहरे में वो जादू है तोर चेहरा में इतना जादू हैगा किशोर कुमार

0: शादी करोगी मुझसे?
1: उजाला रेडियो के जरिए भैया आपने सुने हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, नया चेहरा पे सिर्फ ना देखा जाए तो मार वहां से। कभी कभी हम लोग बहाना बनाएला मुलाकात करने के लिए, सोम्स विलोवे रेड हैबर ओमी मंतसीम